0: ले दचे ये मते
1: सबसे ची दीगर कुमा मुगु यरता काम कर छसो
2: हंगो खंदा नजी मासुशा
1: चोतुब दुए
2: चोतु तुबा दी गंगो नाज दंग माजबी
1: तुंगो लंगा दिने मोरका तोशी निला बदांगा
2: हंगो खंतु मिदु
1: चिनगे केबा हियो शो
2: चेमसो चुनसो खंसा तब देमु मिदु